0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

एक बार फिर तुहाडी सेवा दे विच हाजिर हां। आपां शब्द सरवण कर रहे सी, काहे बन खो बन खोजन जाई, कुछ पंक्तियां एदियां, क्योंकि विचार कर रहे हैं सिख धर्म दे नाल संबंधित गुरमत दियां विचारां ने। ते इस तो पहला शब्द सी, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए। आपां विचार अज करनी किसे नौजवान बच्चे दा सवाल सी, ते उस सवाल दा जवाब सिख धर्म ते निरपक्षता या धर्म ते कट्टरपुणे दी गल चल रही सी जनरल धर्मां दे सच, ते आपां बाकी धर्मां दे बारे कुछ आपां उन्हां दे अंदर भी सैकुलरिज्म की गल हो हैगी है, जो कि आपां पढ़िया होया है, पर आपां अथॉरिटी नहीं है किसी होर धर्म की। इस करके आपां धर्म निरपेक्षता अते सिख इस टॉपिक नूं अज विचारदे हां, क्योंकि एक बहुत वड्डा सिद्धांतक अजकल दे समय च वी ते प्राचीन समय दे विच वी, क्योंकि जदों आपां गुरु साहिबान दे समय दी उस बणतर नूं देखांगे, उस वक्त दे व्यवहार नूं देखांगे, धार्मिक खेतर दे खासकर सिख विचार मंडलियां दे विच या गुरु साहिबान दे दरबार दे विच किहो जिहा व्यवहार सी, आम संगतां दे नाल किहो जिहा वतीरा वरत्या जांदा सी, किहो जिही सोचनी सी, उस ते जदों नज़र मारांगे तां देखांगे कि धर्म निरपेक्षता भाव सैकुलरिज्म दा उत्थे किस तरह की प्रैक्टिस सी, सैकुलरिज्म एंड यानी सैकुलरिज्म एंड सिक्स। जे पहला असी इस शब्द सैकुलर नूं विचारीए, धर्म निरपक्षता दा भाव है कि राज जां सरकार दा अपना कोई धर्म नहीं हुंदा, अते सारे धर्म बराबर मन्ने जाते हैं। यानी कोई भी धर्म जिहड़ा कोई भी देश, अगर देश नूं सैकुलर दी जदों आपां श्रेणी देशां नूं वंडदे हां, जिथे धर्म दी प्रधानता है, जिथे एक धर्म नाल संबंधित या एक फिरके नाल संबंधित लोकां नूं पहले दर्जे दे शहरी मन्निया जांदा है, वो सैकुलर नहीं रहता। ते जदों आपां भारतीय खिते की गल करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की, जिदे विच जिसनूं बरसगीर भी आखते हैं, उस ते जदों गल हुंदी है, जिस त्यों भारत पाकिस्तान ते बंगलादेश तीन वड्डे देश निकले ने, ते इस धरती दे उपर जे आपां इह देखिए एज कंपेयर टू पच्छम, तां किसे लैवल तक धार्मिक निरपक्षता कुछ को राज्यां दे स्टाल दे विच, जिस तरह आपां मौरिया काल नूं लै लैंदे आ, ते पुरातन आपां जदों कहिंदे आ जरा के जिसनों आप BC कहते हैं, यानी कि 2000 साल तो पहला, क्राइस्ट दे तो पहला, वो

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन

शब्द सुन रहे सी, विचार सुन रहे सी, हुण आपां नवें टॉपिक ते गल करते हैं। आम तौर ते इंसान दे विच जिहड़ी सोच काम कर रही है या वर्तमान समय जिन्ना भी धार्मिक विचारधारा जो सामने हैगी है या पहला रही है, उसने कोशिश ये की थी कि इंसान नू डरा के रखिया जाए। कर्मकांड के नाते, वहम भरमा के नाते, पाप पुन के नाते, इसे करके गुरु अंगद पातशाह कहंदे ने, कथा कहानी बेदी आणी पाप पुन विचार। जिहड़ी वो विचारधारा जिहड़ी सी वेदां दी, वो सिर्फ मनुख नूं इहो जिहियां स्टोरीज दे नाल, इहो जिहियां कहानियां दे नाल जोड़ दित्ती है जिथे पाप ते पुन दे विचार की गल है ते लैण देण की गल है। सही मैंने पाप डरा के रखना है, जंजीरां च जकड़ के रखना है, उनू सुतंत्र होण नहीं देना, बंधना दे विच पा के ही रखना है। ते इहो जी विचारधारा, इह नहीं है कि मैं बाकियां ते गल करां, अज गुरमत ते धारणी भी इसे तरह की ही विचारधारा की गल करते हैं, पर गुरु नानक पातशाह की विचार जिहड़ी सी, हो सकता है पुरातन तौर पर उन्हां पुरातन सारिया ही विचारधारा की यही सोच होवे कि मनुख नूं स्वतंत्र रखना है, पर समय के नाल नाल जब धर्म ऑर्गनाइज हो गए, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए, तो फिर इहो जिहे बंधन कर मर्यादावां के नाते, सुनत दे नाते, रवायतां दे नाते, कि जिथे मनुख हमेशा ही उहदी सुतंत्र सोच जिहड़ी खत्म हो गई, जिहड़ी कि आपां उस ते विचार करना है, खास तौर ते जिहड़ी आपां अज विचार कर रहे हां, उही आ पै काहू को देत नै नै पै माणे। गुरु तेग बहादुर पातशाह सानू समझाउंदे ने, असीं हर वार जदों भी किसी सहज पाठ का भोग होवे, समाप्ति कर रहे होइए, अखंड पाठ साहिब का भोग होवे, सलोक महला नौवां तो ही शुरू करते हैं। तो सलोक महला नौवां दे विच ही गुरु तेग बहादुर पातशाह इस कंसैप्ट नूं बयान करदे ने, पै काहू को देत नै नै पै मान त्यान, कहो नानक सुन रहे मना ज्ञानी ताहे बखान। कि नानक जी कहंदे ने कि ज्ञानी ओही अखवा सकदा है जिस नूं ना ते किसे दा पै होवे, ना किसे नूं डरावे, ना किसे तों डरे, ना उसनू किसे दा पै होवे, ना वो किसे ते अपना रोब जमांदा होवे, ताकत असमाई करदा होवे। जिसनू इस गल की समझ आ गई, असल दे विच ज्ञानी ही जड़ा है ओए, ते ज्ञान दियां ही गल्लां पै नू ही विचारन दा जड़ा कंसैप्ट है, गुरु साहब सानू समझाउंदे ने। इन्ना ही श्लोकां दे विच बार बार पै तो मुकत किवें होना है, इस चीज नूं दर्शाया गया है। गुरमत विचारधारा के अनुसार भी तीन चीजां ने, एक ज्ञान है, एक निरपैता है।

0: निडरता, तो तीसरी कर्म है। एक तो मनुख ने कर्म करने ने, चंगे कर्म करने ने, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर का नाम जप निर्मल कर्म, कर्म भी केड़े निर्मल, ये नहीं कि जिस तरह कुछ विचारधारावां ने जिथे वो कहिंदे भाई कर्म करने ही बंद कर दिओ कि कर्म दे नाल ही तुहाडा आवागमन निश्चित हुंदा है, एक भरम है। गुरु साहब आवागमन की गल नूं ही जिहड़ा रद्द कर दिंदे है, वह तो इत्थों तक कहिंदे भी आवागमन की है, एक दब्बे एक दज्जी एक ना कुत्ते खाए एक पानी विच उसलटी एक भी हसन पाए नानक ये न जापी किथे जाए समां। ये मनुखा देह जिहड़ी है बहुते सारे स्टेज तो होके कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिरख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एदेश निरिया। संसार दे साढ़े 400 करोड़ सालां दे इतिहास दे विच ये जीवन जड़ा है संसार की उत्पत्ति होंदी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 भाव लगभग 14.82 यानी कि अजे भी हो सकता फिक्स हो जाए 13,82,000,000,000 साल की उम्र दसी जाती है लगभग इसके आस पास, जिस दे विचों साढ़े सौर मंडल की धरती का जड़ा इतिहास है 450 करोड़ ते जिस च जीवन का जड़ा धरती के उपर धड़कना जो शुरू होंदा है 370 करोड़ साल का यह इतिहास है। हौली हौली इसचों विकसित होंदा होंदा होंदा जड़ा अजोका इंसान है 2.5 लाख साल का वह इतिहास है, जिस दे विचों वो सिर्फ ज्ञानवान होने का वो सोचने का उसकी इमेजिनेशन का जो इतिहास है जिसनों कॉग्निटिव रेवल्यूशन कहते हैं, सोचने की कल्पना करने की जिहड़ी क्रांति है वो सिर्फ 70,000 साल की। सो ये जड़ा विकास करता होया जीवन जड़ा मनुख दा इस लैवल तक पहुंचे हुण इत्थे आ के मनुख ने भिन्न भिन्न प्रकार दे, क्योंकि आपां हुणे ही कुछ सर्वने भी कर रहे सी कि जे मनुख ने जदों बोलना सिखिया तां आरंभ दे विच तां इक्को ही भाषा सी, फिर संसार दे विच अज कल 7,000 तों वध भाषावां जिहड़ियां ने पिन पिन किवें हो गई, इसका भी अपना एक इतिहास है। इसे तरह आपां उस लंबे भाषावां दे इतिहास च नहीं जाते, सभ्यतावां दे इतिहास दे विच नहीं जाते, या विचारधारावां दे इतिहास दे विच नहीं जाते, आपां गुरमत विचारधारा की गल कर रहे हैं कि तीन बेस ने, एक ज्ञान, दूसरा निरपैता, तीसरा कर्म एक्शंस। ज्ञान जड़ा है, नाम जड़ा है, गुरज्ञान पदार्थ नाम है, और नामो दियो त्रिड़ा है, ज्ञान नो ही नाम किया गया है। ते नाम दा जदों जपची साहब दे विच भी एक व्याख्या आंदी है, संख नाम असंख थाओ अगम अगम असंख ले, नाम जो आप वस्तां का जिक्र करते हैं अनगिनत वस्तां का भी नाम है। अकाल पुरख की समुचा जड़ा बाणी दे विच यह जिक्र भी आता है, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मण, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे सगले, नाम उस समुचे ब्रह्मांड नूं भी प्रकृति नूं भी जिसनों आपां अकाल पुरख का सरवण स्वरूप कहते हैं, वो सारा ब्रह्मांड है। तो इस तरह इस दे विच जड़ा सूक्ष्म चेतना है, जड़ा मनुख है, चैतन जड़ जी मनुख की चेतना है, उसका जड़ा विकास, उसने जिस क्योंकि मनुख का मनोरथ तो परम सत सचियारा बनना है, तो सचियारा बनना किवें, हुक्म दे अनुसार अपने आप नू हुक्म दे विच विचरना है, लॉज ऑफ कॉस्मोस के मुताबिक प्रकृति के नियमों के मुताबिक अनुकूल जड़ा जीवन जीना है, और उस जीवन दे विच नाल दे नाल जड़े कर्म ने शुद्ध रखने ने। कर्म की गल आप की थी, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर। कल के प्रोग्राम च आप विचार रहे सी कि कर्मों के विच मनुख हमेशा ही तत्पर है दूसरे की मदद करने वास्ते, जिहड़ा एक कंसैप्ट भी है कि धर्म की किरत करनी, क्योंकि जीवन नूं जारी रखने वास्ते, कंटिन्यू रखने वास्ते, जिंदा रहने वास्ते मेहनत करनी, उद्यम करना है, काल खाई यानी कि कमाई मेहनत करके खानी, ते फिर किछ हाथों दे एक समाजिक व्यवस्था बना के दूसरों के लिए भी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सोचना है। नानक राह पछाने से जिंदगी का जिहड़ा असल मकसद है, मनोरथ है, उसकी पहचान उस व्यक्ति नू है जिहड़ा कमाई करके वंड के छकदा है, क्योंकि वह अकाल पुरख के नाल जुड़िया होया भी है, उसते विधि विधान के अनुसार हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल इस विच विचर रहा है। निरपैता उस विच आएगी जिस दे विचों के रबी गुण जिहड़े जिस मूल मंत्र दे नाल, जिस मंगलाचरण दे नाल सानू अकाल पुरख दे गुणां दे नाल भाववाचक गुणां दा जदों जिक्र आंदा है, नाल सानू जोड़िया गया, सानू उहनां दा उहनां दी व्याख्या कीती गई, निरपाओ निरवैर, निरपाओ निरवैर जे गुण मनुख भी अपनाएगा, ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਰਸਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿਕਾਮੀ ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਮੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੈਕੁੰਠ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਨਿਵਾਸਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ लंगर की सेवा है, भावे वह जोड़िया की सेवा है, भावे गुरद्वारा साहब के हाल के सफाई करनी, जेडे क्लीन ने उन्होंने साफ करना, कारपेट क्लीनिंग करनी है, जो कुछ जिनी भी जी प्रैक्टिकल है या जड़ी अध्यात्मक है विचारक है, सारे ही उस सेवा दे विच ही आ जाता। सो इसे करके ज्ञान निरपैता ते कर्म ये जुड़िया हुई अवस्था ने, इन्हां दे नाल ही जदों इस दे नाल जुड़ गया मनो उसनू स्वर्ग ते नरक दा रब दे किसी कहर दा डर नहीं रहिंदा, क्योंकि अकाल पुरख जिहड़ा है गुरमत के अनुसार असीं इह कहिंदे आ कि तू सांझा साहिब बाप मानस, जिहड़ा बाप है उस तू की डर है, उसने किसी नूं सजा नहीं देनी। बाणी च भी कई बार आंदा ना, रामैया हो बारक तेरा काहे न खंडिस अवगुण मेरा, सुत अपराध करत है जेते जननी चीत न राखस देते। या कर उपदेश चिड़के वो पाती बौर पिता गल आवे। सो इस वास्ते इस रब्बी निजाम दे विच मनुख जिहड़ा है, समुची मनुखता जिहड़ी है वो एक परिवार है, पर गल जब मनुखता दी होवे, जब असी भावे पाथ ऑफ लिविंग साडा कोई भी होवे, मार्ग जिहड़ा है कोई भी होवे, पर जे साडे अंदर इंसानियत नहीं, फिर असी किसी भी धर्म नाल जुड़िए असी उह धार्मिक हो नहीं सकते। कट्टरता किधर भी जिहड़ी है वह सानू धार्मिक नहीं बनाती, सानू संकीर्ण बना दिंदी है। जे असी कहिंदे आ कि भई असी खासकर गुरमत की गल कर रहे, गुरमत का कोई भी धारणी जिहड़ा मतसबी नहीं हो सकता, वह पक्षपाती नहीं हो सकता, पर अज असी देखते हैं कि साडे च चीजा आ चुकी ने, असी धर्म के तौर पर ही नहीं, असी जातां के तौर पर भी पक्षपाती हैं, दुपां के तौर पर भी पक्षपाती हैं, असी इथों तक के प्रचारकों के रूप के भी असी देखिए, कोई मिशनरी है, कोई टकसाली है, कोई नीलधारी है, कोई जिस तरह आप कहते हैं कोई राधा स्वामी है, कोई दूजा है, कोई तीजा है, कोई नामधारी है, ये सारा कुछ, क्योंकि असी ते गुरु के सिख ही नहीं, असी सिखी दे विच ते फिर जे असी गुरु दे असी सिखी तां भी अगे जा के वंडियां च वंडे होए आ, तां असी एज ए सिख इंसान किथे रहे, यानी लोड़ तां इह सी, क्योंकि जिहड़ा जिस व्यक्ति च इंसानियत नहीं है ओह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। गुरबाणी च सिखदा नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काल सवारे, जे इंसान दे अंदरों इंसानियत गायब हो गई, ओदे अंदर हैवानियत उजागर हो गई, ओ तां व्यर्थ होते धरती ते पार है, ओ इंसान जे इंसानियत नहीं ते बंदा किते हो गया। जदों असीं मंग करदे ना कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैसा, ऐ मनुख जिन्हां ते तेरे अंदर जान है तू बंदगी करनी है, या शेख फरीदे खैर बीजे बंदगी, वो इंसानियत दे गुणा दी मांग करता है, डिमांड करते ने, पर जे साडे अंदर वो इंसानियत मर जाए, नरू मरे नर काम ना आवे, वो इंसान जिहड़ा है वह फजूल है, वो इंसानियत दे काम नहीं आता, वो व्यक्ति इंसान हो के भी करतूत पशु की मानस जात लोग पचारा करे दिन रात, वो सिर्फ इंसानी ढांचा है, स्केलेटन है, एक सरूप है, पर अंदर जिहड़े उहदा जिहड़ा किरदार है वो पशुओं वर्ग है, करतूत पशु की मानस जात, हां शरीर तौर पर वो मनुख है। पर असल मनुख ओए जिहड़ा गुरु दे लड़ लग के गुरु तो सिक्ख्या प्राप्त करके गुरु दे मार्ग ते तुर के जिसनों गुरु साहब ए भी कहंदे ने बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार गुरु तो कुर्बान जांदा है जिन मानस ते देवते की ये करत न लागी जिसने मनुख तो मैनू दैवी गुणा का स्वरूप बना टिल नहीं लाई क्योंकि मानस जन्म दुर्लभ है होए ना बारंबार जो बन फल पोए गिरे बौर न लागे बार बार नहीं आता एको बार मिल गया। उस तरह जिस तरह जंगल दे विच दरखत तो फल डिग के पुंजे डिगदा है मुड़ के डाली नाल नहीं लग सकता बड़ा कीमती है प्राणी तू आया लाह लैण लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रह क्योंकि तेरे कोल एक जीवन है इस जीवन का जीवन जड़ा है समय दे विच बेशक रूहानी तौर पर मनुख जड़ा है खासकर गुरु का सिख जड़ा है वह अकाल नाल जुड़िया होया है पर जड़ा शरीर करके इस धरती के उपर जो रोल निभा रहा है वह एक समय दे विच जब उस समय दे विच ते उस समय की कदर करनी भी क्यों कि वह एक लिमिटेड टाइम है अमर शरीर करके कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उस तरह एक विज्ञानिक पहलू भी देखिए साडा जिंदगी ने जो साडे शरीर के जो सैल ने कोई 37 ट्रिलियन सैल्स का मनुखा शरीर है वो सैल जड़े ने वो मरते भी आने वो नवे भी आते क्योंकि सैल अपनी कापी बनाते हैं डीएनए रिप्लीकेट होंगे हर सैल के अंदर तो उसकी एक सीमा है क्योंकि जिन्ना भी साडा डीएनए आ उहदे विच समर्था हैगी आरएनए जे समर्था हैगी कि अपने वर्गा दूसरा हू बहू उस विच समय दे नाल कुछ चेंज म्यूचुएशन हो जांदियां ने पर उह सैल बणदे ने शरीर बणदा है पर उसते जिहड़े किनारियां दे उपर जिहड़े उहदे किनारे ने नोकां ने उह टैलीमेर जिसनूं कहिंदे आ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟਦਾ ਘੱਟਦਾ ਘੱਟਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿੰਸ ਹੈ ਪਰਿਓ ਆਜ ਕੇ ਕਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੌਲਤ ਮੌਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਪੈਟੀਓ ਡੈਕ, ਪ੍ਰੀਕਾਸਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਫਟ ਗਰਾਉਂਡ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰਾਜ ਫਲੋਰ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਅਤੇ ਸਿਕਿਓਰ ਬੇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰਿਊ ਪਾਇਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 403-439-7700 403-439-7700 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਕ ਵੁੱਡ ਮੇਡ ਬੈੱਡ ਬਾਕਸ, ਸੋਫੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰ ਨੂੰ 403-798-0063 ਯਾਨੀ 403-798-0063 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਫਰਨੀਚਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2110, 76 ਵੈਸਟ ਵਿੰਡਸ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਿੰਗ, ਰੂਫਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਫੇਸ਼ੀਆ, ਜੇਮਸ ਹਾਰਡੀ, ਈਵ ਸਟ੍ਰੌਫ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-710-0007 403-710-0007। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲਸਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਤਕਾ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ, ਸ਼ਸਤਰ, ਕਕਾਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਦਸਤਾਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 587-917-0807 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
3: ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੀ
2: ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3210-4310-104 ਐਵੀਨਿਊ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ ਲੰਬਰ ਪੈਕੇਜ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਗਰਾਜ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਡਰ ਤੇ ਫੈਂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 403-433-5555 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-717-3899 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, 3501 23rd ਸਟਰੀਟ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
4: ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ।

चुला चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा हम लगा चले। गुरियाई और तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी, इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बसती सरहंद इंटों का ढेर थी। मिट्टी का ढेर बना के सिखा ने सरहंद का मलिया मेट कर दिता। जेतू दी निशान बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अपनी फौज नाल जदों सरहंद विच दाखल हुंदे है, उत्थों दे प्रातन गुरसिखां कोल निशानदेही करवाई के कित्थे खून डुलिया छोटे साहबजादियां दा, कौम दा बादशाह बड़ी देण है। अज जे असीं किसान जमीना दे मालक हैं, ये देण भी बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। खालसा राज दा पहला बादशाह, खालसा राज नूं कायम करन वाला बाबा बंदा सिंह बहादुर, उन धड़क जरनैल युग दा। पर जदों उस थां ते पहुंचिया जिथे साहबजादियां नूं नीहां विच चिण के कोह के शहीद किया गया सी, उस थां ते इसने मत्था टेकिया ते अखां विच पाणी भराया। इस दे साहबजादियां दी शहादत नूं याद करके उत्थे फिर इसने थड़ा साहब बना के निशान साहब गड़िया ते गुरु मारी सरहिंद दा नां रखिया सी श्री फतेहगढ़ साहब। अज दे दिन गुरसिखां ने, खालसा फौज ने वजीर खान नूं उहदी करनी दा फल भुगता करके ते बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दी अगवाई विच इक जुल्म राज दा अंत कीता। समूह संगत नूं सरहिंद फतेह दिवस दीआं लख लख वधाईआं होवण जी। आओ जो धन सोढ़ी सुल्तान पिता श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे दरों करों अमृत वेले पावन श्री मुख वाक साहिब जी दी दात बख्शिश होई है, उस दी विचार नाल जुड़ना करिए। मन चित बिरतियां नूं एकागर करन दा यतन करदे होए आखो जी।

0: जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-452 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड।

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी ले पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नु कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: हो जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: मैं जनाब मौला अली सरकार दा एक वाकया पेश कर रहा। एक सवाली ने आके सवाल किया हजरत मौला अली सरकार ने कि सरकार मैंने रोटी दे, मैं बहुत दिनों तो भुखा हूँ। जनाब मौला अली सरकार दे एक गुलाम था जिन्हों का नाम कंबर से। मौला अली सरकार ने कंबर नू फरमाया कि सवाली नू रोटी दियो। कंबर कहिंदा कि सरकार रोटी संदूक है जी। सरकार मौला अली कहते हैं कि संदूक ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब संदूक ऊंट से है। मौला अली सरकार कहते हैं ऊंट ही दे दियो। कंबर कहता है कि जनाब ऊंट 100 ऊंटा की कतार है। मौला अली सरकार फरमाते 100 ऊंटा की कतार ही दे दियो। कंबर ने जदों ये गल सुनी वो मौला अली सरकार के कोल चला गया। मौला अली सरकार फरमाते कि तू मेरे को की लेन आया है। कंबर कहता है सरकार के मैं ये सोचा थी कि कितने मैंने भी ना सवाली नू दे दे। जिस वक्त सवाली और ऊंटा की कतार लेके तुर पिया राज किसी ने पूछा कि इन्ने ऊंट कितों लेके आया है। ते वो अगू मंगता की कहता है सुनने वाले लोगों मैं एसएम सादिक का कलाम पेश कर।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: प्रभ दर्श पिया

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary, near Stamp

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सब किश तो है मेरे प्यारे।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी

4037710 यानी 4037771099 पे संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-6060 या विजिट करो www.

0: सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मण, सच्चे तेरे लो, सच्चे आकार, सच्चे तेरे करणे सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फुरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लाख करोड़, सच्चा सप्तान, सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे है सो कचन कच, महला पहला।
1: वडी वडियाई जा वड्डा ना, वडी वडियाई जा सचनिया, वड्डियाई जा निश्चल था, वडी वडियाई जाने आला, वडी वडियाई बुझे सभाओ, वडी वडियाई जा पुछन दात, वडी वडियाई जा आपे आप, नानक करना कथनी जाए, कीता करना सर्व जाए, महला दूजा।
0: इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, एक ना हुक्म समायल, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना पहाने कड़ दे, एक ना माया विच निवास, एव पे आख ना जापई जे किसे अने रास, नानक गुरमुख जानिए।

0: पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ पड़िए साथ, पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात, पड़िए है जते वर्ष वर्ष पड़िए जते मास, पड़िए जती आजा पड़िए है जते सास। नानक लिखे एक गल पर हो मैं चखना चाक महला पहला,
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया वह तीर्थ पवया ते तो लव्या, बह भे किया दे तुरदिया सोए जी अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे एहनस कहरे मौन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरसाई पाई, मूर्खां दे पत गवाई विनावे किस थाई न पाई, रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछुताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से ते नहीं केवल।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्य कूड़ बेपूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच ता पर जानिए जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल तेरे तन करे हछा तोए सच ता पर जानी जा सच तेरे प्यार नाउ सुन मन दसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानी जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विदे करता बियो सच ता पर जानी जा सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानी जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के वह रह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कढ़े तो होए नानक वखाने बेनती।

0: दुखदारु सुख रोग भया जा सुताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कलकला भर दूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बात जो किश करना सो कर रहया महला दूजा।
1: जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है। खत्री शब्दन सूर शब्दन सूद्र शब्दन पुराकृत है। सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पहो नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा।
0: एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास दे बस्य जे को जाने पहो नानक ता का दास है सोई निरंजन दियो महला पहला।
1: कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्दा।

0: न जाई। धोती टिका जप माली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कते बस नमकुर का पाई। छोड़ी ने पाखंडा नाम लय चाहे तरंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास छुरी बगैन तिन गलता। तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना पियावे ईसा। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार। शर्म तरम कड़े राधू नानक कूड़ रहे भरपू। मथे टिका तेड़ धोती तो कखाई। हथ श्री जगत का साई। नील वस्त्र पर हो प्राण। मलेश तान ले पुझे प्राण। अपाख्या का कोठा बकरा खाना। चौके पुरख से न जाना।

0: जेकर सूतक मनिए सबते सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जे ते दाने अन के जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूत क्यों कर रखिए सूत पवैर सोए, नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे तो ए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर तंदूप, कन्नी सूत कन पहला तिवारी खाए, नानक हंसाए आदमी बद्ध है जम पुर जाए महला पहला।
0: सब सूतक परम है दूजा लगे जाए, जमन मरना हुक्म है पाणे आवे जाए,
1: खाना पीना पवित्र है दी तौंद जित संभाहे, नानक जिनी गुरमुख बूझया तिना सूतक ना है।

0: नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सटिए मो चुका फिके पाहे फिका मूर्खा किए पाणाल है सजाए महला पहला
1: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पड़े संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप ही कर जा परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे नाही दरबार टूपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने।

0: अस कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के हुन आखिए जे सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंड फसा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जिस वैसे पाए।

0: एक नहीं दाता तप से जो पाइए नानक साकर मात साहेब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित को खसम ना जाए नानक सेवता।

गुरुप्रसाद ककर चिहन अर वरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सक केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितो जिक हिजै

सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जग और न जाहे महातम मैं अवतार जग रयान

प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। रोगंते अर सोगंते जल जोगंते बहुपत बचावै।

अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूर अरसोह पुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया

जिस पास बैठिया सोहिया सबना दिसहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह जिस पास बैठिया सोही

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

मन साचा मुख साचा कही है। जिहड़ी गल मन विच है ना उही मूंह दे विचों बोलिया कर। कई बार ऐसा भी हुंदा है ना, मन विच साडे कुछ होर हुंदा है ते मूंह विचों असी कुछ होर बोलते हाँ। हां इहनूं ही झूठ कहिंदे ने। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। झूठ इन्ना वध गया है मां बाप बच्चियां नाल झूठ बोलते हैं ते बच्चे मां बाप नाल झूठ बोलते हैं। मित्र मित्रां नाल झूठ बोलते ने ते सत संगियो अनगिणत बंदे रोज रब दियां झूठियां सौआं ही खाई जाते। अत दे माड़े काम करके अत दा झूठ बोल के कहंदे ने सौ लगे रब दी मैं सच बोलदा। खबरे सानू मरना भुल गया है, अंत जान ते रब ने ही लैनी है, क्यों झूठ बोलदा है। जो जी होए सो उगवै मौका क्या बाओ। जेड़ा बीज धरती दी कोख विच गया है ओही उगना है। उपर पए बीज ते हवा विच उड़ जाने ने जां पंछियां चुग जाने ने। जेड़ी गल तेरे मन अंदर है ना भाग ते उसे नूं ही लगने ने, क्यों झूठ बोलता है, क्यों झूठ बोलता है। बई इस तरह भी होंदा है, नितनेम दा भी पूरा है, शुभा शाम संगत विच भी बैंदा है, लोकां दियां नजरां विच पूरा धर्मी है, पर जदों अपने कार विहार ते बैंदा है ना जाके अंतां दे झूठ बोलता है, अंतां दे झूठ। पर सतसंगियो सतगुरु कहंदे ने अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। अंदर दे झूठे ने बाहरली पैज बनाई हुई है, पर गुरु दियां नजरां विच तू अंदर दे झूठे प्रवान कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बैठे ने ते कोल हिंदुस्तान दा राजा बहादुर शाह बैठा है। कहन लगा महाराज, बंदा पांच नवाजी होवे नितनेमी पूरा होवे, कोई गल नहीं दे अंदर झूठ है ते निरंकार उनू प्रवान करे लेंदा है। सतगुरु कहन लगे, नहीं बहादुर शाह, अंदर दे झूठे अंदरों खोटे बंदे रब जी दी दरगाह विच नहीं चलदे। सतगुरां ने एक गुरसिख नू आवाजा दिता, जेब दे विच्चों एक सिक्का कढ़िया है ते इहदी तली ते रखिया है, जा बई बाजार जा ते कुछ सौदा लेके आ। गुरसिख चला गया। थोड़ी देर बाद एक खाली हाथ तुरिया आंदा है ते आ के कहंदा है, महाराज ऐ लो सिक्का, ये चलिया कोई नहीं। सतगुरु कहंदे ने बहादुर शाह, बई देखते सही, तेरी टकसाल विच बनिया है, तेरी उपर मोर लगी हुई है, तेरा राज है, तेरे राज विच तेरा सिक्का नहीं चलिया। बहादुर शाह ने तली ते रखिया, कदी सज्जे कदी खब्बे दोनों पासों देखिया, फिर कहन लगा, महाराज असल विच गल ए है कि ए अंदरों खोटा है, जिन्ना सोना इस विच होना चाहिदा है ओना है नहीं, अंदरों खोटा है। सतगुरु महाराज कहन लगे, बहादुर शाह

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: नानक नाम मिले

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने के लिए कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लिए साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस या विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नू 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका ते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइटिंग स्टुको सॉफ्ट फिशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700-403-439-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700-403-479-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

जी दे चरणा च बेनती की सी, गरीब नवाज अपने चरणा विच आप कृपा करके थां बख्शिश कर दवो। आप जी ने बचन किए सन भाई दान सिंह, ये चरणा विच थां अमृत शक्ति प्राप्त हो सकती उवें नहीं हो सकती। आप जी का बचन आप जी दे प्यारे भाई दान सिंह जी ने मनिया, बेनती की गरीब नवाज अमृत छक लिया आप कृपा करो। सो हुण ते अपने आप जी दे चरणा च पीड़ी क जिनी थां सानू प्राप्त हो जाएगी। भाई दान सिंह सारे थां तेरी, भावे मंजा डाक के बैठ जाओ, सब कुछ तेनू दे दिता। इस तरीके दे नाल कृपा रहमत करो, लावो अपनी चरनी, आप कृपा करके अपने चरणा न

0: जीव कर्म कर रहे हैं। आप जी ने अपने भाणे विच ही सारिआं दे जिवें जिवें उन्हां दे कर्म हन सकाम कर्मां दे प्रेरे होए जीव उसे उसे तरीके च लगे होए हन।
1: तुज ते बाहर किछु ना होआ।
0: गरीब नवाज जी, आप जी तो बाहर कुछ भी नहीं हो सकदा जे।
1: पापी नाही किछ काड़ा।
0: इस करके कादा झोरा पड़ा करना होया जदों आप जी तो बाहर कख है ही नहीं। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी समझाउण दा जतन कर रहे ने गुरसिखा कादा पड़ा चोरा, जे परमेश्वर नूं जो पावेगा उन्हें करवा लैणा है। जिवें जीआं नूं भेज रहा है उवें ही सो बुला रहा है। सो भाई उस तरीके दे नाल इह जी उहदे भेजे होए आउंदे ने ते भेजे होए चले जांदे ने। कादा चोरा की करना होया, किसे गल दा चोरा कीता ही नहीं जा सकदा जे।
1: ऊहा हुकम तुम्हारा सुनिया।
0: तो दोवां ही जहाना विच आप जी दा ही हुकम सुनदा है। सो आप जी दे हुक्म तो बाहर कोई है ही नहीं जी। कृपालू जी, जिवें आप जी दी बाणी विच आप जी ने थावां थावां ते समझाउण दा जतन कीता है। हर रोज श्री जपजी साहब जी दे विच वी ऊहा इह जिहड़े सारे संसार नूं चलाउण वाले समझी बैठे ने, लोकी उन्हां शक्तियां दी पूजा करी जांदे जी। आ फलाना मारन वाला है, आ जी इह ब्रह्मा जी ने इह भंडारी रिजक देण वाले ने, आ फलाना विष्णु जी इह जीआं नूं जी दान देण वाले ने, इन्हां दी पूजा करी जाणी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई इक संसारी इक भंडारी इक लाए दीवान, जिवत सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान। ओहां सारिआं दे उत्ते ये जितने भी हैं दोवां ही लोकां दे विच महाराज आप जी दा हुक्म ही वरत रहा है।
1: ईहा हर जस तेरा पणिया।
0: लोक विच भी आप जी दा हुक्म, ईहा इत्थे सत्संगत विच भी आप जी दा जस कहिंदे हां।
1: आपे लेख अलेख आपे।
0: महाराज आप ही जीआं दे लेखे लिखण वाला है, आप ही कृपा करदा। लेख छोड़ अलेख छूट हौ निर्गुण लेहो उबारी। आप ही कृपा करके लेखा तो रहत करन वाला है।
1: तुम स्यो नाही किछ झाड़ा।
0: गरीब नवाज जी, तेरे नाल भला कादा कोई झाड़ा झगड़ा कर सकदा, कोई जम्मिया एहो जिहा जिहड़ा तेरे नाल झगड़ा पा के बह जावे। तेरे नाल भला की कोई वणज विहार कोई झगड़ा कर सकदा, नहीं तेरे नाल झगड़ा बनदा ही नहीं। सो इस तरीके दे नाल आप कृपा करके समझाउंदे हन।
1: तू पिता सब बारिक थारे।
0: तुसी पिता स्वरूप हो, ये जितने जीव हन सारे आप जी दे

0: नहीं कोई परमेश्वर वाहिगुरु की कीमत वड्याई कह ही नहीं ना सकता। कीमत ता है ना वस्तुआ की कीमत आप किवें गिणदे आ कि फलानी चीज वर्गी तिखी कीमत पै गई, रब वर्गा दूजा है ही कोई नहीं। सो गुण एहो होर ना ही कोए, ना को होआ ना को होए।
1: आपे आप निरंजन पूजा,
0: सो आपे आप ही निरंजन है एदे, सो आप ही आप एदे, सो सतगुरु साहब जी दे प्रतक कोई होर पूज नहीं सकता जे। आप ही अपनी पूजा करवाउण वाला है जीआं दे पासों।
1: आप सो ज्ञानी आप ध्यानी,
0: आप ही ज्ञानी ज्ञानियां नूं ज्ञान देण वाला है, ध्यानियां नूं ध्यान देण वाला है।
1: आप सतवंता अत गाड़ा,
0: आप ही सत प्रतगी है, अत गाड़ा भाव निरहल है परमेश्वर वाहिगुरु, बहुता गहर गंभीर है जे।
1: केतड़िया दिन गुपत कहाया,
0: एक दिन अपने आप नूं गुपती कहा लिया जदों सारे जुगां नूं समाप्त करके ते सुन अवस्था विच बैठ गए जे।
1: केतड़िया दिन सुन समाया,
0: अवस्था विच अरबद नरबद धुंदूकारा ओ अवस्था विच किन्ने क जुग किन्ने क दिन जुगा तो भी परे आप जी समाधि ला करके बैठे रहे।
1: केतड़िया दिन धुंदूकारा,
0: किन्ने क दिन धुंदूकारी संसार ते हनेरा ही वरता दिता, चंद आकाश सारे दीवे बजा के ते पासे रख दिते जिवें। सो जिस समय घर दे मालक नूं लगा कि हुण मैं आराम दी अवस्था च जाना है, उन्हें पाई दीवे बत्तियां कीतियां बंद ते आप अपने आसन ते जा करके सुभायमान हो गया। इवें ही परमेश्वर वाहिगुरु ने ये जिहड़े दीवे ही बाले होए ना, कदी चंद चढ़ गया, कदी सूरज, कदी तारे, बेअंत सूरज, बेअंत तारे, बेअंत ही लख पाताला पाताल, लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक वात। ये सारी सृष्टि आपे ही हुण रची हुई है, पर जदों मौज विच आया सारी नूं समेट के ते अपने घर विच जाके आसन ते सुभायमान हो गया, तंदूकार ही कर दिता जी सारे पासे।
1: आपे करता प्रगटना,
0: जदों मौज च आया आपे ही प्रगट कर दिते, सारे प्रतख लिया के वखाल दिते जे।
1: आपे शक्ति सबल कहाया,
0: कहिंदे आप ही सहत शक्ति ते माया, सो आप माया सफल हो करके परमेश्वर कहा लिया जी, आप ही माया द्वारा प्रगट कर लिया, आप माया ही सारी रज दित्ती ना। जिथों तक दृष्टि आ रहा है सारा नाशवंत है, पर मोह जांदा नहीं, ये माया रूप हो करके आप प्रगट हो रहा है जी।
1: आपे सूरा अमर चला,
0: आप ही सूरमा है, आप ही अपना अमर हुक्म चलाउण वाला है जी।
1: आपे शिव वरताई आने अंतर,
0: आप ही शिव माया वरताउणा कीती जियां दे अंदर, शिव नाम ठंड दा भी हुंदा है, आप ठंड जियां दे अंदर वरताउण वाला है जी।
1: आपे शीतल ठार गड़ा,
0: जिवें गड़ा ठंडा हुंदा इस तरीके दे नाल शीतल जीवां नूं ठंडे करन वाला है जी।
1: जिस है नवाजे गुरमुख साजे,
0: जिन्हां नूं नवाजदा है उन्हां नूं गुरमुखता ही दे करके सजा देंदा, बख्शिश करदा है जी।
1: नाम वसा तिस अनहद वाजे,
0: उन्हां दे हिरदे च नाम वस जांदा है, अनहद धुन उन्हां दी प्रगट हो आउंदी। इत्थों तक बरियारां वाले महापुरखां वांग ओ भाई जिया ने आण करके सिंघां ने बेनती की, महापुरखो अनहद धुन की हुंदी है, भाई बांह ते वजा के विखाल दित्ती, कहिंदे भाई इस तरीके दी हुंदी, आओ तुहानू सुना दईए अजे ही बख्शिश, अनहद धुन दे वाजे वज रहे हन।
1: तिस ही सुख तिस ही ठकुराई,
0: कहिंदे उन्हां दे भाई सारे प्रतख सुख आप कृपा करके दित्ते ने, ठकराई मालक ही बख्शी हुई है अपने प्यारियां नूं।
1: तिस है न आवै जम नेड़ा,
0: उन्हां दे नेड़े जम नहीं आ सकदे परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यार दे जे।
1: कीमत कागद कही ना जाई,
0: कोई यतन करे कि सतगुरु साहब जी दी वड्याई कागज ते लिख दईए, कहिंदे भाई लिखी नहीं जा सकदी, सारी वनस्पति कलमा बन जान, सारे समुद्रां दी शाही बना लईए, जितनियां धरतियां हन इहदा कागज बना करके हवा नूं लिखण वी ला दईए, तां वी परमेश्वर वाहिगुरु दी कीमत कही नहीं जा सकदी जी।
1: कहो नानक बेअंत गुसाई।
0: भाई वो बेअंत है, अंत तो रहत, गुसाई मालक है जी।
1: आदि मद अंत प्रभ सोई,
0: इहदे आदि विच भी ओही ओह सी, इस सृष्टि की रचना तो पहला भी ओह सी, मद रच करके भी ओह है, अंत जदों इस नूं इस दी सारे नू समा लवेगा अपने विच उदों भी ओहो ही होवेगा जे।
1: हाथ तिसा कै नेबेड़ा,
0: कहिंदे उहदे हाथ च नबेड़ा है जीआं दा भाई, ए जीआं नू रचण तों पहलां, जन्म तों पहलां भी ओहो है, हुण पालनहारा भी ओहो है, माता दे गर्भ विच भी रिजक देण वाला ओहो है, पऊ हुण भी ओहो रोटी दे रिहा है। जदों इह संसार तो लै गया उदों नबेड़ा लेखा करन वाला भी ओहो है, उहदे हथ विच है, उहदे अगे अरदास करिया कर।
1: इस है शरीक नाही रे कोई,
0: हुण समाप्ति ते समझाउंदे एवें खज्जल ना हुंदा फ्री इधर उधर, उहदा शरीक कोई नहीं, कि किसे कोलों सिफारिश करवा लवें, उहदा सिफारिशी कोई नहीं, वो सिद्धा ही सुनदा है तेरे नाल, सिद्धी गलबात है, जिन्हें तेनू पैदा कीता है, तेरे अंदर जेड़ा आप वसिया होया है, आप प्रतख रूप हो करके सुभायमान हो रहे ने, किसे नू विच विचोला ना पा, उहदा शरीक है कोई नहीं। आपां इहो लभदे हां कि किसे नू सिफारिश पाउणी ते उहदी सकीरी आला लभ लईए, उहदा कोई सांझी लभीए, उहदा शरीक कोई है ही नहीं। रे कोई भाव आवाज दे के मारे कहिंदे ओए गल सुन भलिया मानसा, ओदा शरीक कोई नहीं।
1: इस ही बुता जवाब ना होई,
0: भाई उस ते उपर किसे थां ते जा करके उनु जवाब नहीं देना पैंदा, अथवा ओदे घर विच जेड़े लगे हुए हन उन्हां पासों कोई जवाब नहीं लैंदा जे।
1: नानक का प्रभ आपे आपे,
0: तो भाई साडा सतगुरु साहब जी कहिंदे ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जो प्रभु परमात्मा है, सारे कार्जां नूं करन वाला आप ही है, ये सारी सृष्टि नूं सुख देण वाला, ये सारी सृष्टि ते नाम दी दात वरताउण वाले आप ही हन।
1: कर कर वेखै चोद खड़ा,
0: ये सारे जीआं दी रचना दे, इन्हां दे पालण दे, दुख सुख देण दे, ये सारे चोज करदा होया आप अकाल पुरख वाहिगुरु सुभायमान हो रहा है। ये बख्श सतगुरु साहब जी ने अमृत हुक्मनामे द्वारा कीती है। कृपालू सतगुरु साहब जी की पावन अमृत कथा की विचार करदे हां, एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां होईयां हन। सतगुरु गुरु की संगत बख्शनहार है, बख्श लैणा जी अगाह तो समत बख्शणे, देहो सज्जन असीसड़ियां जे होवे।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3670-63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: श्री गुरु चरण सरोज रज निज

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोज़ेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: या फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स सोफे लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: हर जुग जुग पग

सुन बड़ा अख सब कोए के बड़ बड़ा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए बड़े मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा होए न जाने तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मेला सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञान

तुद बिन सिद्धि किन न पाईया, कर्म मिल नाही ठाकुर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तों देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा।

ओम सुखी वसा मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज करदै करिय सबन को आस संगरिय।

शिवकान को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह पद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्तूला, सा पर कृपा।

द्वार मत निर्गुण हम मिलै कबहूँ अपनी कृपा तार। हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत नावै। तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लै हर भावै। हम अपराधी राखे गुर संगति उपदेश दियो हर नाम छुड़ावै। तुमरे गुण क्या कहां मेरे सतगुरा जब गुर बोलै तब बिस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै जैसे हम सतगुर राख लिए छुड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंध पमेरा सखा सखाए।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नु कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइटिंग स्टुको सॉफ्ट फिशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-04